0: सेम कोने शुरू है यंदा रीरे की सेम सिंबदीनी कावे जोंकी लुजु छिमो रीगे ग्याजु छुदी
1: Singing

0: 로링 원래 텐데 체어랑 아주 직다야 저 치쇼가 초에 근원에 양고 직 티급이야 저랑 그 직 칼레 진짜 제 양고
1: 주 주디엔
0: 주디엔 이게 다다는 거 그럼 리뷰 샤베 좀 된다 차려 봐 근데 추다 주 근도 추지 버려 돼 이날 고급 지주잖아 그걸 믹스해 지 어디 양고 텐데 차도 단지네 아니 신이 저 로리 티게로 야 집에서 안 최고 시주산다 지 로리 티 야부 충분들 세다 세람 마게 양지 가려 그걸 수게
2: 我们的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在这里的人都是在
0: mama ungo kozu wa sasa ngandu shama tige ru gu chwe go tengi tengi kunzu golma ungo tengi tengi chubu tseshi kao tiba ane mama panda maata tila ma lingwa
1: tundo gea da dhuwa yuwa marga
0: kunzu tizi ge mangzi gena ngamu ne dapzang kunzu tiri ga
2: ngato
1: minga
0: ra yu zansu zang kunzu ngandu luge dawa ngabe dangli ya chwe go tanya du luka sa kunzu lukzi chato kunzu doze de dawa ngabe dangli chwe go tuji dang chato
2: Oh, listen. अनि गाबा चाहिँ जो सिदु गने अनि निमा स्टेमा छछैन अनि तमे दिया अनि कमी यमे चाहिँ जो जो छया तिति सका जिरि अनि तौ ठुगेना लिना ठुग छरे छ अनि कमरे ब छोटो ताया तमा छछैन दिन्दे थुरो बिल्या ले दु अनि दिगेल ता लगबालिन गल हम ले यो ता अनि छगो तुजिन दि सब गेरि छेन अनि कन्जु छदा ओंगा छेन ता लेमी कोई चीज़ तो ब्रेकी के सेसे के मंगवाक सोच तक अंदर दी टेबल सागलम दे अनि यहाँ चिन्नाम के चाटा कोण दे तिंदे यहाँ से ब्रेक लाई चुंचुंग न्यूम्बर वाल जेते ने वो तिंदे से ने अनि तातेम दे ता मंगवाक सोच जी ता कोई निजू री तिंदे से सुरील
3: Chinda jubi chi chudu nini, zemlin juri nimi yinbi, ting di ngwa chai zhuli li chai nang, dui long di jin chu, gurum xiang ki, sa ji do di gi xingba, gian amdu la tang, gam li xie la ni din zhi xu qi, ngan chu, long su ju xingbi juri gi, yung gong la, yang yar xie do tang, ngu zin xu yu.
0: Ta tini yi chi chao zhu dang gana xu xu yu go, chu go dang go jim zi kan sa ta jim juan li ya, zi gug de bui.
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: 아니 가르쳐 신경 좀 먼저 대야게 다
2: 거. 다 되게 재미있게
0: 돼요. 어, 요 말로 세리 쪽으로 봐. 진짜 자대 담대 쉽지 이제. 자든가 보면 너 유네